की दर्द और हित का भाव रखने वालों ने हर हालत में शीतलता बांटने का ही कार्य किया है। हमें चाहे कितने ही नफरत फैलाने वाले क्यों न मिल जाए, हमने अंगार नहीं बन जाना, हमने जलती हुई आग को थामने के लिए पानी का बरसात का रूप बनना है। हमने उस अवस्था को बनाए रखना है।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आए हैं गांव तेजा मोड़ी में और हमारे साथ यहां पर कई सारे गांव के रहने वाले हैं, वो बैठे हैं और हमारे साथ सरपंच जी भी है। और खास करके यहां पर हम आए हैं, हमारा इस गांव से संपर्क जब हुआ तो यहां इस गांव के एक बहुत ही हरदिल अजीज व्यक्ति है बंशीलाल सिंधु जी, उनसे हम मिले और उनसे हमने आग्रह किया कि हम आपके गांव में आना चाहते हैं। तो आज हम इस गांव में आए हैं तो बहुत सारी बातें हम इनसे करेंगे, जितने भी लोग आए हैं उन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले जो गांव के मुखिया होते हैं, जिनको गांव के बारे में पूरी जानकारी होती है, जो गांव की उन्नति के बारे में जानते हैं, अगर कोई गांव में कमी है उसके बारे में जानते हैं, तो हमारी कोशिश है रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम सरकार तक और अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाएं। अगर उन्नति हुई है तो वो भी हमें सरकार तक पहुंचानी है, अगर कोई कमी है वो भी हमें सरकार तक पहुंचानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ के सरपंच जी से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें ताकि लोग ये जाने कि हम किन से रूबरू हैं।
1: पार्थ जी, पहले तो मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं सरपंच गांव मोड़ी जी, और हमारी पंचायत दो गांव की पंचायत है, गोविंदगढ़ है जी, एक मोड़ी, वहां से मैं सरपंच हूं
0: जी।
1: और आप जो भी हमको गांव के बारे में पूछेंगे वो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं।
0: सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो हम सरपंच जी से इसलिए सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि उनको गांव के बारे में सारी जानकारी रहती है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप अपने गांव के बारे में और आसपास के जो आपके गांव है, अपने लोग हैं, उनके बारे में आप हमें बताएं।
1: मेरे गांव में जी बहुत पुराना गांव है जी मेरा
0: जी,
1: और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग रहते हैं, आपस में मिलवर्तन बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ऐतिहासिक गांव होने के कारण सभी जातियों के लोग रहते हैं और जिनका आपस में बहुत ही अच्छा मिलवर्तन है और सभी एकता से और बिल्कुल किसी भी पक्षपात के बगैर रहते हैं और अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है।
0: तो आपकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि गांव की उन्नति होनी चाहिए। उन्नति में हम कई सारी चीजें देखते हैं, जैसे गांव में सड़कें, गांव में पानी की सुविधा। तो क्या आपके गांव में जो सड़कें हैं उनकी रखरखाव और जो जरूरतें हैं वो सरकार पूरी करती है, या अगर उसमें कोई कमी है आप वो भी हमें बता सकते हैं ताकि हम आपकी बात को और आपके गांव वालों की बात को सरकार तक पहुंचा सकें।
1: मेरे गांव में जी कम से कम भी 4 गांव से 7-8 सड़कें लगती हैं
0: जी,
1: सबकी हालत ठीक है तकरीबन
0: जी।
1: लेकिन एक थोड़ा उन्नति की बात ऐसे है जी, गांव में जो गोहर रास्ते हैं वो रास्ते कच्चे हैं और उनको पक्का करवाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी और जितने भी अधिकारी हैं उनको सबके पास अपना जो भी लिखित रूप में रेजुलेशन पंचायत का डाल का सबको पहुंचा दिया है कि उनको पक्का किया जाए, क्योंकि वहां पर कुछ लोग जैसे डेरे हैं वो लोग रहते हैं, उनको आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। गोहर रास्ते मेरे गांव के तकरीबन सारे ही कच्चे हैं और उनको पक्का करवाया जाए, ये मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ।
0: जब आप सरकार से कोई चीज मांग लेते हैं तो मुझे आशा है कि वो उन बातों पर ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है उसमें जो सरपंच है गाँव का उसके पास बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं। कम से कम अगर सरपंच अपने गांव की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, आपके जो टीम है पंच और बाकी जो लोग हैं या गांव के लोग हैं उनकी तरफ से आप कोई रेजोल्यूशन या कोई प्रार्थना पत्र आप सरकार को देते हैं तो वो उस पर काम करते हैं समय समय पर?
1: सभी बहुत अच्छे तरीके से काम होता है जी, सभी पंच अच्छे तरीके से भी काम करते हैं, लेकिन जो सरकारी काम है उनमें होने में बहुत देरी लग जाती है। सरकारी काम है ना, जो जैसे हम सोचते हैं भी चलो अब रेजुलेशन दे दिया, शायद उसको होते होते बहुत टाइम लग जाता
0: है, बहुत टाइम लग जाता है।
1: मैंने बनने के बाद, सरपंच बनने के बाद एक रेजुलेशन दिया था जी, जिसमें मेरे गांव में बहुत अच्छे लड़के प्लेयर हैं और मैंने अपने गांव में स्टेडियम बनवाने के लिए एक रेगुलेशन डाल के वो एप्लीकेशन दी थी, जिसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और उसमें मेरे गांव के अंदर एक साल के अंदर 2-3 बारी टूर्नामेंट भी करवाई जाती है, जो कि एक हमारा बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मेला है कुश्ती दंगल का, वो होता है। हमारे गांव को एक स्टेडियम की बहुत ज्यादा जरूरत है जी, बच्चों को यानी वर्जिश करने के लिए भी अंबाला जो हमारे से 20-22 किलोमीटर दूर पड़ता है वहां पर जाना पड़ता है, और स्टेडियम की एक बहुत ज्यादा डिमांड है। मेरे गांव की एक मेन डिमांड यही है भी स्टेडियम और गोहर रास्ते जो कच्चे हैं उनको पक्का किया।
0: आपने बहुत अच्छी बात की, आपने खिलाड़ियों की बात की, चाहे वो कुश्ती का हो या कबड्डी का हो। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारे युवा खेलों के साथ जुड़ते हैं तो वो कोई अन्य गलत रास्तों पर नहीं चल पाते हैं। तो ये आपकी पहल बहुत अच्छी है, और जिस पहल पर आप चले हैं आपके सारे गांव वालों का साथ है, तो मुझे पूरी आशा है कि सरकार भी उस पर ध्यान दे और आने वाले दिनों में उसकी जो भरपाई है, जरूरत है, वो पूरी करें। आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ गाँव के बारे में, जो साफ सफाई है, इसका क्या साधन है यहाँ पे, पहला। दूसरा, क्या नल से जल हर घर में आता है या अभी भी वो पुरानी प्रथा है, हमारी जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, वो बहुत दूर से पानी अपने घरों में लाते हैं, उसके बारे में आप बताइए।
1: हमारे गांव में जी 2 बोर हैं जी,
0: जी,
1: और सबके घर में पानी पहुंच रहा है
0: जी, नल से जल,
1: नल से जल
0: जी।
1: और एक बोर का और रेगुलेशन तय कर दिया हुआ जी, उसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है जी, गांव के बीच में से थोड़ी ऊंचाई है और साइड में नीचा है, तो साइड में पानी जाएं जहाँ गांव के बीच में पानी जाने में थोड़ी दिक्कत हुआ, इसलिए एक बोर
0: उस इलाके के लिए करा जाए।
1: हाँ, उस इलाके के लिए एक बोर और लगवाया जाए, एक नलकूप यानी पानी पहुंचाने के लिए, उसका मैंने रेगुलेशन डाल के दे रखा है।
0: साफ सफाई के साथ हमारा जो व्यक्तित्व को साफ सुथरा रखना, जिसको हम अंग्रेजी में हाइजीन कहते हैं, पर्सनल हाइजीन कहते हैं, उसके बारे में लोग कितने जागरूक है। जैसे हमने खाना खाना है तो खाना खाने से पहले हमने हाथ धोने हैं, इसके बारे में कितनी जागरूकता है गाँव में, और खास करके जो हमारी महिलाएं हैं उनका पर्सनल हाइजीन, उसके बारे में आप अगर कुछ बता सकते हैं तो।
1: बर्फ जी, पहले तो लोग अनपढ़ होते थे
0: जी,
1: लेकिन आज गांव में लोग बहुत जागरूक हैं
0: जी,
1: और बहुत पढ़े लिखे हैं, और आप तो साबुन से कह रहे हैं जी, तो शैम्पू आगे हाथ तो तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो गांव में सबके घर हैं जी, और कोई ऐसी बात नहीं है जी, बड़ी साफ सफाई है और हरेक बंदा बड़ी साफ सफाई के साथ रह गया जी।
0: सरपंच जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारा यहाँ आने का मकसद यही है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो देश है वो गांव से बनता है, और अगर गांव तरक्की करता है, गांव की सोच समझ अच्छी होती है, तो उसी में हमारे देश की तरक्की हो रही है और दिख भी रही है। मुझे ये खुशी है कि मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि इस समय मैं गांव तेजा मोड़ी में हूं, और जब हम यहाँ अंबाला शहर से होते हुए आए और पूरे गांव तक पहुंचे में, इवन इस डेरे तक जहां पे हम बैठे हैं वहां तक पूरा रास्ता है और गाड़ी को चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुशी होती है कि जब आप अपने घर से किसी और गांव में जाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग गांव में जाते हैं, तो हमें खुशी होती है कि लोग अपना हक सरकार से मांगते हैं, जो उनकी जरूरत है वो उनसे पूरी करवाते हैं। सरपंच जी, आप कब से हैं गांव के सरपंच?
1: मैंने 3 साल हो गए।
0: और आगे आगे जब आप लोगों के पास जाते हैं, और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, गांव में कई बार किसी के साथ मनमुटाव होता है या घर में परिवार सदस्यों का मनमुटाव होता है, क्या ऐसे भी कोई लोग आपके पास आते हैं जो उसका समाधान आपसे चाहते हैं?
1: हाँ जी, बहुत, ये तो रोज चलता रहता है तकरीबन। आजकल जी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है
0: जी,
1: और नए नए ब्याह हुआ जी
0: जी,
1: और कईयों की बेचारे की लव मैरिज हुआ
0: जी,
1: और वो बस 3-4 महीने बाद थाने में पहुंच जा।
0: अच्छा,
1: फिर वहां हमारी बहुत जरूरत पड़ा जी, बस वहां तो हम जय रहे जी।
0: ये इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आमतौर पर लोग पहले इस विषय में बात नहीं करते थे, पर अब वो समय नहीं है। अब अगर दो लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक बात सही नहीं है, तो आज चुप नहीं रहते हैं, उसकी बात करते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप गांव के सरपंच हैं, तो सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि जो बात घर की है वो घर में ही रहे, तो अगर गांव में ऐसी कोई बात होती है तो आपकी भी कोशिश यही होती है कि उसका समाधान हम यही आपस में बैठ के करें, पुलिस स्टेशन या थाने में ना जाए।
1: वैसे तो जी आजकल पता क्या बात हुआ जी, गांव में समझदार लोग बहुत कम है।
0: जो पहले थाने में ही जाते हैं, बाद में आपके
1: पहले पढ़े लिखे ज्यादा होंगे ना जी,
0: ठीक है,
1: पढ़े लिखे ज्यादा होने का थाने में पहला जहाँ जी,
0: अच्छा,
1: लेकिन निबड़ा गाँव में ही आने का।
0: एमिकेबली चले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ अपने गाँव की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं ताकि गाँव और तरक्की करे, जैसे आपने स्टेडियम की बात की, जैसे आपने उन रस्तों की बात की जो डेरों की तरफ जाते हैं, वो तो आपने, कोई और ऐसी बात या अपने जो आपके साथी है गाँव के उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो अपने गाँव के बारे में यही कहना चाहूंगा जी, बहुत अच्छे लोग हैं
0: जी,
1: और आपसे मिलकर हाँ जी सारे, और सारे नु यही मेरा तो संदेश है जी, अगे वास्ता भी सब पार्टियां साइड में रखकर, पार्टियां पूर्टियां ने कुछ नहीं करना जी, सब ने आपसे मिल वर्तना बढ़िया रखो और अच्छे तरीके के रहो, भाईचारा वरतो, कोई जाति धर्म एरा वगैरह कुछ ना वरतो, ये चीजा जो
0: इंसानियत को सबसे आगे रखो,
1: इंसानियत को आगे
0: जी,
1: यही कहना चाहूंगा जी मैं तो। गुरबाणी का फरमान है जी, अब अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, तो उस गुरबाणी के अनुसार मैं तो कहूंगा जीवन जियो और बढ़िया तरीके करो।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और आपकी बात हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव तेजा मोड़ी से हम FM 90.0 रेडियो वितस्ता से आज आप सभी श्रोताओं से मुखातिब है और हम आज कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे, युवाओं से भी बात करेंगे, उनके दिल की बात भी जानेंगे, और इस समय हमारे पास जो स्रोत है जिसके माध्यम से हम इस गांव में आए हैं वो है बंशीलाल संधु, उनसे बात करेंगे। बंशीलाल जी आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि
2: आपका भी स्वागत है जी आने का,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपने गांव के साथियों के बारे में बताएं और आपके गांव में आप किस तरीके से एकजुट रहते हैं, किस तरीके से अपने त्योहार है कैसे मनाते हैं, ताकि सारे जो हमारे सुनने वाले हैं वो आपकी बात को समझ पाए।
2: यहाँ देसी का मही सारा
0: जी,
2: बस तुम्हारा दो लड्डू उसको दे दिए, हमारा बर्फी दे जाएगा और कोई उसको लेते थे उधर बन रही है, प्यार हो जाएगा तो क्या
0: जी,
2: बनना जरूर हो, चाहे कुछ आओ चाहे सवारियां बननी पड़ो, बननी पड़ाना आपस
0: में। अब आप अपने साथियों के बारे में और अपने गाँव के बारे में बताइए, किस तरीके से आप अपने त्योहार मनाते हैं मिलजुल के?
2: इनका पूरा प्यार है जो हिंदू है, मुसलमान भी आपस में मनाते हैं, क्या सिख भाई या गुरुद्वारे में सब जाते हैं
0: जी,
2: कोई है साझा काम करते हैं।
0: आपके गांव में खास बात क्या है?
2: दिवाली की कुश्तियाँ बहुत तगड़ी
0: जी,
2: हाँ ये बहुत खेड़े बादशाह की है, नगर खेड़े की।
0: सरपंच जी ने अभी बात की कुश्ती की और कबड्डी की,
2: हाँ।
0: उसके बारे में आप बताएं, आप किस तरीके से आप इसको आयोजन कैसे करते हैं?
2: बड़े अच्छे ढंग से लगा जी, तो बहुत इंटरनेशनल गेम चल गई,
0: अच्छा
2: नंबर एक ज्यादा कुश्ती,
0: तो सरकार का भी उसमें सहयोग होता है?
2: सरकार का कोई नहीं है,
0: अच्छा वो आपस में आप मिलजुल के करते
2: हैं, आपस में कराएंगे
0: ठीक है। और जो आप FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता सुनते हैं उसके बारे में कुछ कहें और हमारी श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
2: नहीं प्रोग्राम अच्छे हैं, समझाने वाली बात है, देखो तड़की आवा इतवार को सवेर 7 बजे हरियाणवी प्रोग्राम है, धाकड़ आंदी थी
0: हाँ, न्याय धाकड़,
2: हाँ न्याय धाकड़ बड़ी अच्छे प्रोग्राम पेश कराए रागणिया लावा
0: जी,
2: बस ठीक है कुल मिलाएगा प्रोग्राम अच्छे हैं।
0: न्याय धाकड़ के लिए कोई संदेश?
2: बस संदेश क्या, जुग जुग जियो अपनी अच्छी जिंदगी जियो, यूनिया जियो एन खुश लगती जियो, बड़ी खुशी से कहती कहते भी लंबी उम्र होगा पड़े राम मंजे वगैरह लंबी उम्र भी जाएगा एन जियो खुला।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
2: ठीक है
0: मंशलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गांव तेजामोड़ी से मैं भारत सोपोरी और हम यहां के लोगों से बात कर रहे हैं और अब हम बात करेंगे बलविंदर जी से। बलविंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आपका भी बहुत ही आने पर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज यहां पे आए हैं, हमारा मकसद है कि हम आप लोगों से बात करें और आप लोगों की बात रेडियो के माध्यम से सरकार तक तो पहुँचाएंगे ही और साथ में जितने भी हमारे आस पास के गाँव है जहाँ हमारा रेडियो सुना जाता है तो वहां पर भी आपकी बात जाए, ताकि अगर यहाँ कोई अच्छी बात है तो हमें अच्छी बात को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहे। आप अपना परिचय दें, आपको गांव में किस नाम से जाना जाता है और उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं।
1: मेरा नाम बलविंदर सिंह संधू, कुक्कू के नाम से जानते हैं
0: जी।
1: और हमारी समस्या है, सरपंच साहब ने सारी समस्या आपको बता दी, मुंशीलाल जी ने बता दी
0: जी।
1: चलो, हमें एक समस्या थोड़ी है, पिपराड़ी वाली जमीन यहाँ पे सैकड़ों एकड़ है
0: जी,
1: जिम्मेदार हैं छत्ती बरादरी के जिम्मेदार, हरिजन भी, जाट भी, शर्मा जी भी, कहार भी, सारे तरह के सैनी भी, सारे तरह के खेती करते। समस्या उनकी यही है जो धुएं वाली, उसका कोई सलूशन नहीं जिम्मेदार का।
0: नहीं, मैं एक चीज ये आपसे जानना चाहूंगा, पराली जो पराली जो खेत में है, आप उसको जब जलाते हैं तो उस धुएं से परेशानी होती है या आप उसको जलाना नहीं चाहते?
1: जलाना नहीं चाहते।
0: गवर्नमेंट तो अभी जैसे हमने भी कुछ समय पहले पढ़ा था कि सरकार ने कुछ ऐसा समाधान किया है कि आप उस पराली को काट के उसके वो गड्ढे बना दें, और क्या ऐसी सुविधा सरकार की तरफ से है या नहीं है? तो वो जो गटर बना लेते हैं पराली के, वो क्या हम जो गांव के लोग अपने खर्चे से करते हैं, क्या करते हैं?
1: अपने खर्चे से करते हैं सर, ये तो नाम नहीं उठाते।
0: अच्छा,
1: नहीं है
0: क्योंकि
1: जो कणक बोने का टाइम हो, कणक बोने का टाइम हो, ये सियाने कहते हैं भी सिर खजा दो, लेट हो जाते हैं।
0: ठीक है,
1: कणक बोते हैं
0: ठीक है,
1: तो इसका सलूशन तो कुछ करना पड़ेगा।
0: यानी कि अगर पराली कट गई तो उसको जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए ताकि खेत खाली हो जाए, आप अगली फसल को लगाए। पर एक तरीका ये भी है कि जो पराली है एक मशीन से उसको काटा जाता है तो वो खेत में ही आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है, उसके एक तरीके से खाद बन जाती है, फिर जब आप उसको क्या बोलते हैं, सुपर सीडर, तो जब उसमें ट्रैक्टर आप चलाते हैं तो वो उसमें मिट्टी में मिल जाता है, तो क्या वो समाधान सही नहीं है?
1: समाधान तो है जब उसको बहाई करके रोनी कर देते हैं, फिर खेतों में जब वो देते हैं उसको कीड़ा लग जाता है नीचे।
0: यानी कि आज के डेट में जैसे सरकारें कहती हैं कि लोग या जो जमींदार है वो जानबूझ के पराली जलाते हैं, तो आप लोगों का कहना है कि आप जलाना नहीं चाहते?
1: जानबूझ के कोई नहीं
0: जलाता,
1: सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये जमीन सैकड़ों एकड़ जमीन है, 1500-1600 फुट रहे यहाँ
0: जी,
1: और सैकड़ों एकड़ जमीन है, 3600 किला जमीन का है
0: जी जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात जरूर पहुँचाना चाहता हूँ कि जितने भी ग्रामवासी है या जो जमींदार है या जो खेती बाड़ी करते हैं, वो चाहते हैं कि हम पराली को ना जलाएं, ताकि हम वातावरण को भी शुद्ध रखें, किसी और को सेहत की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जब पराली जलती है तो धुएं से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। पर इनका ये कहना है कि हम सरकार से अनुरोध ये करते हैं कि सरकार हमें कोई समाधान दे ताकि पराली का जो प्रबंधन है वो अच्छी तरीके से हो, और ताकि उनकी खेत जल्दी से जल्दी खाली की जाए ताकि वो अगले फसल के लिए खेत को तैयार करें। आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अभी जैसे आप नए युग के हिसाब से जो मशीनें आई हैं खेती में, एक समय था जब सिर्फ हम हल जोत के खेती करते थे, तो आज के समय में आप कौन कौन सी मशीनें यूज करते हैं जिससे आप अपनी पैदावार को बढ़ाते
1: हैं? मशीनीकरण तो बहुत हुआ है, तो मानना पड़ेगा। पहले हल चलाते थे लोग
0: जी,
1: सारा सारा दिन
0: जी,
1: तो घंटों वाला काम मिनटों में, वो तो होता है जो है तरक्की तो की साइंस
0: जी। तो गांव में जब लोग पढ़ लिख जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो डिग्री भी करते हैं, इंजीनियरिंग भी करते हैं, बट वो अपनी खेती के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो सब्जी के काम करते हैं या जो जीरी या कनक की का काम करते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे अपने परिवार को, अपने समाज को खेती के साथ जोड़े रखे?
1: सारे गांव में सभी जातियों ने अपने बच्चे जुड़े हुए हैं जैसे
0: जी,
1: और कोई काम तो ज्यादा तो बिजनेस में होता नहीं, कुछ है लोग जो प्रॉपर्टी डिलीवरी का भी काम करते हैं, और भी दर्जी के भी काम करते हैं, बिखेरे हैं
0: जी,
1: सारे तरह के काम करते हैं।
0: जो आसपास के गांव है जहां तक हमारे रेडियो की आवाज जाती है, उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं?
1: खेती हमारा धंधा है
0: जी,
1: इसके साथ जुड़े रहिए। मतलब यही अनुरोध है अगले बच्चों को, इसे बगैर कुछ नहीं। सारे काम बंद हो गए थे जब वो आया था कोरोना, तो ये एक धंधा था जो चलता था।
0: वो एक्चुअली विश्व भर की एक परेशानी थी, पर हमारे देश ने, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश ने उस कोरोना को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला, हम सबको इंजेक्शन दिए, तो हमारे देश का इतना नुकसान नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलविंदर जी, आपने हमसे बात की और हमारे श्रोताओं से बात की।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अम्बाला तक पहुँचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अम्बाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
4: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
0: गांव तेजा मोड़ी से हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर बात कर रहे हैं और यहाँ के गांव में आए हैं और सभी से बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हाकम सिंह जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: स्वागत है जी।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गांव में जो वातावरण है, जो साफ सफाई है, जो पानी का घरों में आना, उसके बारे में आप बताएं। और अगर आपके पास कोई और भी मन में कोई बात है जो आप सभी श्रोताओं को कहना चाहते हैं, वो भी कह दीजिए।
6: सबसे बड़ी समस्या यहाँ आवारा डंगरों की है
0: जी।
6: आवारा डंगर बहुत हैं, इसका सलूशन होना चाहिए था
0: जी।
6: ये बहुत नुकसान कर रहे हैं, फसलों भी उजाड़ रहे हैं, ट्रैफिक को भी परेशान कर रहे हैं, आने जाने वाले बंदे को टक्कर भी मारते हैं, फसलों को भी जाड़ते हैं
0: जी।
6: इनकी रखी करनी बहुत दुख है।
0: तो क्या ऐसा नहीं है कि गांव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिनके वो डंगर है वो उनको अपने पास बांध के रखते हैं या खुले छोड़ देते
6: हैं? छोड़ देंगे कोई
7: आवारा।
0: अच्छा, जो किसी और गांव से
6: गड्डियां छोड़ के चले जाते
0: हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है?
6: ये यहाँ का कोई गौशाला वगैरह का होना चाहिए जरूर।
0: अच्छा, तो क्या आप लोगों ने अपने सरपंच जी को इस तरीके का कोई रेजोल्यूशन सरकार को देने की बात करी है ताकि वो आप लोगों की ओर से सरकार को कहेंगे कि हमारे गांव में ये समस्या है?
6: यहाँ थोड़ी दूरी पर है गौशाला खुली, वहाँ पे लेके जाते हैं, वापस कर लेते हैं, लेते नहीं है।
0: अच्छा,
6: कहते हमारे पास तो इसका खर्चा नहीं पुगता, हम कहाँ से रखेंगे उनको?
0: उनको वहाँ कुछ पैसे देने होते थे, अब ऐसा सिस्टम है कि नहीं?
6: पैसे भी लेते हैं, फिर भी हम वहाँ इस दरवाजे से छोड़ेंगे, दूसरे दरवाजे से निकाल देंगे, अगले दिन फिर हमारे गांव में खड़े हुए।
0: अब आप यही जो बात कहना चाहते हैं सरकार से, आप वो एक बार फिर कहिए ताकि हम कोशिश ये कर सकते हैं कि आपकी बात को सरकार तक पहुंचा।
6: हमारे पास से इसके पैसे भी ले लेते हैं
0: जी,
6: 1100-1100 की पर्ची काटते हैं
0: जी,
6: उल्टा हम बोलते हैं कि इसके बारे में तोड़ी भी दे, हमारे को घास भी दे, इस दरवाजे से छोड़ते हैं, दूसरे दरवाजे निकाल देते हैं, अगले दिन फिर हमारे पास स्त्री खड़े।
0: यानी कि
6: में हमारे को आवारा जानवर खेत में नील गए, बहुत नुकसान है। अनुरोध करते हैं भी हमारा ये समाधान जरूर करें।
0: देखिए, हम भी इसीलिए आए हैं यहाँ पर, ये जानने के लिए कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो शायद सरकार तक, आपके गांव के जो मुखिया होते हैं उनसे तो पहुंचती है, पर आवाज की दुनिया एक अलग एक माध्यम है। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ आके आप सबसे बात करें और उस बात को सरकार तक पहुंचाएं।
6: धन्यवाद, आप वहाँ से पहुंचाओ बात।
0: और यहाँ आपके गांव में बंसीलाल संधू जी हैं, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि जहाँ ये नहीं हो वहाँ पर कुछ आनंद नहीं आता।
6: तो रौन के मिल रहा है जी हमारे गांव का,
0: क्या कहना चाहेंगे? क्या
6: बहुत कुछ मजाक मिलता है, जहाँ पे चार बंदे बैठता है
7: कलाकार।
0: हम आपके गाँव में इनके माध्यम से आए क्योंकि इन्होंने हमसे बात की, तो हमने इच्छा जाहिर की कि हम आपके गाँव में आएंगे, तो आज हम आप सबके पास
6: इसका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका हाकम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात कहने के लिए।
4: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
0: एक बार फिर मैं भारत सोपोरी गांव तेजा मोड़ी से, हम इस गांव में आए हैं और अभी हमने कुछ लोगों से बात की। अब हम यहाँ के जो युवा है उनसे बात करेंगे, उनके दृष्टिकोण से जानेंगे कि हमारा जो गांव है वो किस ओर चल रहा है, कितनी तरक्की गांव में हो रही है और कितनी तरक्की आने वाले दिनों में हमारे देश की तो है। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए अपना परिचय पहले दें।
1: आपका विश्वास रखें सर।
0: धन्यवाद।
1: मेरा नाम रमनदीप सिंह है, मैं यहीं तेजा मोड़ी गांव का रहने वाला हूं और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, डिप्लोमा और बीटेक करके। मैं यमुनानगर इसजे कंपनी में जॉब करता हूं।
0: जी, तो आप हर दिन तेजा मोड़ी गांव से यमुनानगर जाते हैं और शाम को वापस आते हैं या वहीं रहते हैं?
1: नहीं, मैं पहले रहता भी था, मेरी ड्यूटी के हिसाब से जैसे नाइट होती है तो मैं आ जाता हूँ, डेली अप डाउन भी करता हूँ।
0: तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है?
1: यमबाड़ा सिटी से ही करी है सर।
0: अच्छा।
1: जमा किया और यमुनानगर जगाधरी से
0: बीटेक किया हुआ है। आपसे हम जानना चाहेंगे, ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होते हैं।
1: जी,
0: आप मुझे ये बताए कि आपके गाँव में सारी सुविधाएं हैं, जिस सुविधा के साथ अपने जीवन व्यापन आप अच्छे से कर पाते हैं?
1: जी, मेरे लिए हमने जो जैसे हमने अपना जो बचपन गुजारा है और जो देखते आए हैं, हमारा सब कुछ सही है। मतलब हमें इतनी दिक्कतें यहाँ गांव के हिसाब से इतनी हुई नहीं, जैसे लाइट की, पानी की या आने जाने की समस्या, मतलब इतनी कोई इशू हुआ नहीं। लेकिन मेरा जो मेन यहाँ अभी जो देखता आ रहा हूँ ना, जो आजकल के बच्चे हैं, तो मेरा तो मेन यही है कि जैसे आजकल सोशल मीडिया ज्यादा हो गया है
0: जी।
1: तो उसको देख के सोशल मीडिया को ना, अब हर घर में एक नहीं, दो दो तीन तीन सब पे स्मार्टफोन है, तो बच्चे खेल कूदने की बजाय, फिजिकली एक्टिविटी की बजाय, अपने मोबाइलों में वही गेम में खेलना, सोशल मीडिया चलाना, वही आजकल इंस्टाग्राम रीले वगैरह है, मतलब ज्यादा मैक्सिमम टाइम अपना उसी पे स्पेंड करते हैं।
0: तो क्या आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर ज्यादा समय गुजारने से हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है और उनका जो ध्यान एजुकेशन पर या अपने काम पे होना चाहिए उससे वो भटक रहे हैं?
1: जी, अब देखो सर, हर चीज का नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। अब सोशल मीडिया का, इंटरनेट का फायदा भी है अगर उसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए। अगर हम उसको पढ़ाई के माध्यम से देखें तो उसका हमें बहुत यूज भी है, जो हमें चीजें नहीं पता लगती थी वो हम आजकल ये नेट से देख लेते हैं, गूगल सर्च कर लेते हैं, बहुत चीजें हैं। लेकिन उसका नुकसान भी है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, रीले है या गेमिंग है, उस पर मतलब फिजिकली एक्टिविटी ना करने के बजाय बच्चे सारे अपने घर में बैठ के इनडोर
0: गेम्स ही खेलते हैं। हाँ। जिससे उनके सेहत पर असर पड़ता है। आपको जहाँ भी मौका मिलता है, जैसे गांव में जब आप होते हैं, तो क्या आप इस तरीके के बातें अपने जो युवा साथी हैं या बच्चे हैं उनको ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमें जो पढ़ाई करनी है उसकी दिशा वो होनी चाहिए कि जो हम पढ़ाई भी करें और घर के काम भी करें और फिजिकल एक्टिविटी भी करें? तो क्या ऐसा मौका कभी मिलता है?
1: कभी कभार जो जैसे मिल जाते हैं तो साथी मिलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो खेलते हैं, कभी जैसे चले गए। अब मैं आपको बताया ना, सबसे मेन तो यही है, जब हम बच्चे थे, बचपन बिताया यहाँ पर, बहुत खेलते थे हम, साथ में खेले हैं। लेकिन अभी जब बाहर निकल के देखते हैं ना, तो कोई खेलता हुआ ही नहीं मिलता। और दूसरा, जो हमारे सरपंच साहब ने पहले बताया भी है कि यहाँ स्टेडियम ही नहीं है, मेन तो यही है कि जब कुछ खेलने का साधन ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो वहाँ खेलेंगे कैसे?
0: कैसे खेलेंगे
1: बच्चे? मतलब बहुत कम आज के टाइम में बाहर खेलते हैं, सोशल मीडिया पे, नेट पे, मोबाइल पे ज्यादा लगे हैं। मतलब बच्चों को अपना फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी चाहिए। और जो आपने मेरे को पहले क्वेश्चन किया उस पे मैं वापिस आऊंगा, ये है कि जैसे हम मिलते हैं, अब मैं यही कहता हूँ कि जैसे जो हमने दिक्कतें देखी हैं कि किस टाइप की पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अपने यहीं पे रह के जो हम और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि जिससे और आगे आने वाले बच्चों को दिक्कत ना आए, तो वो उसके रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कभी कभार।
0: आपसे जानना चाहूंगा कि जो गांव तेजा मोड़ी है, इसमें एक युवा होने के नाते आप आने वाले दिनों में क्या बदलाव देखना चाहेंगे, जो सरकार की ओर से हो, जो जिससे यहाँ के बच्चे और आगे बढ़े, तरक्की करें? क्योंकि अगर गांव तरक्की करता है तो हमारा देश आगे बढ़ता है।
1: मेनली तो सर यही है कि जो जैसे बच्चे आजकल देख के, बड़ों को ही देख के, छोटे बच्चे हैं जो बचपन में जैसा देखेंगे वैसे ही वो बड़ा होके

0: हमारे अंबाला के सभी युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं?
1: सर, यही संदेश है कि खेलो कूदो, बढ़िया पढ़ाई करो, नशे से और इससे दूर रहो और देश की तरक्की करो।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये जानना चाहूँगा कि भारत सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, वो ये चाहती है ये पता करना कि लोगों के घरों में नल से जल आता है और जो पर्सनल हाइजीन है वो गांव में कितना होता है, और खास करके जो फीमेल्स है उनकी पर्सनल हाइजीन के लिए क्या गांव में वो सारी सुविधाएं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: अब तो सर पिछले 10-15 साल से मतलब पढ़े लिखे हैं सब, आजकल सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिक अगर कोई नहीं भी बता रहा तो देख लेते हैं कि ये चीज करनी चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है। तो हाइजीन और पर्सनल हाइजीन तो अपने आप ही मेंटेन कर रहे हैं और गांव में ठीक ठाक है, सब बढ़िया है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने युवाओं के दृष्टिकोण से बात रखी। और जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं वो हमें दिशा निर्देश देते हैं, और जब युवा उस चीज को रिसिप्रोकेट करते हैं तो वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात होती है। और बड़ों का आदर और सत्कार करना हमारी संस्कृति में है
1: जी,
0: हमारी सभ्यता में है। जो बड़ों के दिए हुए संस्कार और उनका हम सम्मान करते हैं तो तब तक हमारी उन्नति चलती रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद।
2: वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
0: इसी श्रृंखला में हम बात अब करते हैं गुरजीत सिंह जी से। और गुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के इस कार्यक्रम आओ गांव चले में। हम गांव तेजा मोड़ी में आए हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ प्रश्न। सबसे पहले आप अपना परिचय दें।
3: नमस्कार सर, मेरा नाम गुरजीत सिंह और मैं इस मोड़ी गांव का निवासी हूं। मेरी 30+ एज होगी
0: जी। आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं?
3: नहीं, मैं जॉब और खेती दोनों
0: करते हैं। और जो खेती बाड़ी आप करते हैं, जब युवा खेती के साथ जुड़ते हैं तो कितना सरल हो गया है खेती बाड़ी करना पहले के कंपैरिजन में?
3: सर, सरल तो हो ही गया है, क्योंकि पहले तो काफी सारा दिन खेत में रहना पड़ता है
0: जी जी।
3: अब तो खेत में हफ्ते में एक दो या दो दिन चक्कर लगा लो तब भी अपनी खेती हो जाती है। अब मैं हफ्ते में एक दिन चक्कर लगाता हूँ संडे वाले दिन और खेत में,
0: यानी कि मशीनी दौर आने के साथ साथ। तो यहाँ पर केवल जीरी और कनक होती है या सब्जियों का भी?
3: ये जो हमारा इलाका है इसमें मैक्सिमम जीरी और कनक ही करते हैं
0: जी,
3: उसमें सब्जी वगैरह कुछ नहीं।
0: अच्छा, तो कई जगहों पर हम देखते हैं हरियाणा में कि लोगों ने अब जो खेती में धान की और गेहूं की खेती करते थे, अब उन्होंने अलग अलग सब्जियों का काम भी शुरू किया। अभी इस गांव में ऐसा नहीं है?
3: नहीं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा डॉक्टर एरिया है जी, जो हमसे 2 या 3 किलोमीटर आगे चले जाओ दड़ाना साइड, यहाँ पे खेती भी सिर्फ सब्जी की होती है, वहाँ पे जीरी कनक नहीं हो सकते वो।
0: अच्छा,
3: वो गन्ना और ये सब्जी सारी गोभी वगैरह मिर्चा सब यही लगी मिलेंगे।
0: अच्छा,
3: जो हमारा ये एरिया है थोड़ा सा, इसमें सिर्फ जीरी और कनक ही करते हैं।
0: आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो प्रेरित हो आपकी तरफ, वो आपकी बात पर वो ध्यान दें? क्या संदेश आप देना चाहेंगे युवाओं को ताकि वो अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका योगदान क्या होना चाहिए?
3: सर, योगदान तो सर देखो स्टार्टिंग से उनके माँ बाप पे डिपेंड करते थे, नींव वहीं से रखी जाती
0: जी।
3: अगर माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी पढ़ाई कराएंगे
0: जी,
3: तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे रास्ते पे चलेगा
0: जी।
3: अच्छी पढ़ाई के बाद वो अच्छा कहीं जॉब भी लगेगा, कहीं काम भी करेगा
0: अपने घर के लिए भी,
3: घर के लिए भी अपना। सबसे पहले उसके माँ बाप पे डिपेंड है, वो अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको अच्छी पढ़ाई कराएं और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए उसकी थोड़ा निगरानी भी रखें। एक उम्र ऐसी आती है कि बच्चा वहाँ पे थोड़ा हिल डुल जाता है, अपने फर्जों से लगा लो, किसी नशे में ना पड़ जाए, किसी गलत संगति में ना पड़ जाए, तो माँ बाप उसके देखे, उसकी देखभाल करे, थोड़ा फोन से उनको थोड़ा हटाए, ज्यादा टाइम फोन पे भी ना यूज करने दें, फोन का भी एक लिमिट रखे, खेलने की भी लिमिट रखे। ये ज्यादातर मैक्सिमम की माँ बाप पे डिपेंड करता है, अगर घर का माहौल सही है तो बच्चा ऑटोमेटिकली सही।
0: अगर आपको गांव में कहीं मौका मिलता है तो जो युवा होते हैं क्या आप उनको कुछ कहने की कोशिश करते हैं कि उनका जो दिनचर्या है, उनका जो पढ़ाई की तरफ रुझान है वो होना चाहिए?
3: हाँ, मैक्सिमम जो छोटे बच्चे हैं वो मेरे साथ काफी लगाव है, मुझे बच्चों के साथ लगाव है,
0: जितने
3: मेरे अटैचमेंट बच्चे रहते हैं वो, उनको तो मैं हमेशा सही गाइड ही करता हूँ कि क्या करना है। कितनी देर फोन, मेरे पास कोई बच्चा फोन नहीं देखता, जितनी देर मेरे पास रहेंगे वो खेलेंगे मेरे साथ
0: जी।
3: और मैं उनको यही चीज कहता हूँ, फोन कम से कम देखो जितना देख सकते हो, बाकी खेल कूद में रहो। फोन से उनका माइंड तो तेज हो जाएगा, उनका जो फिजिकल
0: एक्टिविटी
3: बिल्कुल लड़ा है।

0: वो छोटे छोटे छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, वो या थक जाते हैं लगा लो या भाग नहीं सकते।
1: हाँ
0: हम मान लो जितना हम भाग लेंगे 30-35+ में, वो भी उतना नहीं भाग सकते, वो भी अभी 10-12 साल के मान लो कुछ भी हो, क्योंकि वो फोन ही देख रहे हैं सारा दिन, फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि वो फिजिकल एक्टिविटी में खेलें कूदें, तो थोड़ा फोन कम करें।
1: युवा होने के नाते और गांव की जो आपके मुखिया हैं और सरकार से, आप कोई कुछ ऐसी बात रखना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं कि आपके गांव में हो, ताकि आपका गांव और आगे बढ़े?
0: कोई आसपास में, जैसे हमारे गांव के 10-12 किलोमीटर के आसपास कोई इंस्टीट्यूट इसी तरीके का कोर्स टाइप, कोई ऐसा कुछ सरकार बना के दे,
1: जैसे ITI या
0: ITI
1: इस तरीके
0: वगैरह होगा। कोई अम्बाला जाना पड़ता है, अम्बाला के लिए हमारे पास साधन कम है, बस दो ही टाइम आती है, एक सुबह और एक शाम को, बाकी तो ऑटो वगैरह तो लोग तो साधन हो गया। पहले टाइम में थोड़ा इसी पास साधन नहीं थे, तो हर बंदे के पास हमने एक्टिवा हो गई है, लेके चला जाता है, माँ बाप भी छोड़ देते हैं बच्चों को।
1: आपका कनेक्शन अम्बाला शहर से रहता है या अम्बाला छावनी से?
0: शहर से,
1: शहर से ज्यादा
0: मैक्सिमम सारे काम अम्बाला शहर।
1: और अंत में आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते
0: हैं? बस यही संदेश है सर, अपनी माँ बाप की सेवा करो
1: जी,
0: और नशे से दूर रहें सर, और अच्छी पढ़ाई करें, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे गांव में आके, और ये कार्यक्रम आओ गांव चलें हमने तैयार किया, और इसमें मेरा सहयोग राहुल ने दिया और सभी गांव वालों का, और खास करके हम शुक्रगुजार हैं सरपंच जी के और बंशीलाल संधू जी के। और हम उम्मीद करेंगे हम अगली बार फिर आएंगे, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे और उनकी भी दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में ये आपसे जानना चाहूंगा, जो एक प्रथा पहले होती थी कि जब गांव पानी की जरूरत होती तो गांव की महिलाएं मटका लेके कहीं दूर से पानी ले आती थी, तो क्या उस प्रथा से हमारी महिलाओं को मतलब आजादी मिली है कि नहीं मिली?
0: वो तो सर 100% आजादी है, वो तो सर 10-12 साल से कहीं भी कोई भी करते पानी लेने नहीं गए कहीं बाहर,
1: और ना शौच करने कोई बाहर जाता है,
0: वो सर सबके घर में लैटरिंग बन चुकी है सर 10 साल से, और सब अपने घर में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हम आप सभी गाँव वालों को शुभकामनाएं देते हैं, ये गाँव ऐसे ही तरक्की करे, उन्नति करे, और हम एक बार फिर आए और ये गांव इससे भी आगे बढ़ा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

मैं जब घर छोड़कर यहाँ पहली बार आई थी तो मैं बहुत रो रही थी, और आज जब घर वापस जाने का वक्त आ गया है तो फिर से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं।

आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। गर्मी में मधुमक्खियों का बढ़ जाता है मोमी कीड़े का प्रकोप, रोकने के लिए विशेष जाली लगाएं। मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक प्रबंधन से शहद का उत्पादन बढ़ा सकते हैं किसान। मधुमक्खी पालन एक बेहद संवेदनशील और मुनाफे का व्यवसाय है, ऐसे में मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों के लिए मई और जून का महीना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। डॉक्टर कमल सैनी DHO ने बताया कि गर्मियों के इन कठिन दिनों में अतिरिक्त ध्यान और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाकर किसान न केवल अपनी मधुमक्खियों को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि उत्तम गुणवत्ता वाले शहद का बम्पर उत्पादन लेकर अपनी आय को भी दुगना कर सकते हैं। गर्मियों में यदि मधुमक्खियों के पक्षों का सही प्रबंधन न किया जाए तो न केवल मक्खियों के भागने या मरने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि शहद के उत्पादन में भी भारी गिरावट आ जाती है। गर्मी में मोमी कीड़ा, वैक्स मॉथ और पीली ततैया का हमला बढ़ जाता है। बक्सों की नियमित सफाई करें और प्रवेश द्वार पर ततैया को रोकने के लिए जाली का उपयोग करें। पक्षों का तापमान नियंत्रित रखने के लिए छायादार स्थानों का चयन करें। मधुमक्खियों के बक्सों को कभी भी सीधे धूप में ना रखें। इन्हें पेड़ों की घनी छाया के नीचे स्थापित करें। यदि छायादार पेड़ ना हो तो बक्सों के ऊपर पुआल, पराली या हरी नेट, ग्रीन शेड नेट डालकर कृत्रिम छाया का प्रबंधन अवश्य करें। गर्मी में बक्सों के ऊपर जूट की बोरियां टाट डाल दें और उन पर दिन में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करें। इससे बक्से के भीतर का तापमान नियंत्रित रहेगा और मक्खियां शांत रहेंगी। गर्मियों में मक्खियों के छत्ते को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यदि पानी दूर होगा तो मक्खियों की ऊर्जा सिर्फ पानी लाने में ही नष्ट हो जाएगी। बक्सों के बिल्कुल नजदीक लगभग 10 से 20 मीटर के दायरे में साफ और ठंडे पानी के बर्तनों की व्यवस्था करें। पानी के बर्तनों में सूखी लकड़ी के टुकड़े, जूट की रस्सी या कंकड़ पत्थर डाल दें ताकि पानी पीते समय मधुमक्खियां डूबकर ना मरें। चाशनी बनाकर बॉक्स के अंदर रखें। इन दिनों में प्राकृतिक रूप से फूलों की कमी हो जाती है, जिससे मक्खियों को पर्याप्त मकरंद, नेक्टर और पराग पॉलन नहीं मिल पाता। इस कमी को पूरा करने के लिए चीनी व पानी को 1:1 में घोल चाशनी बनाकर पक्षों के भीतर फीडर में रखें। ध्यान रहे घोल शाम के समय ही रखें ताकि अन्य बाहरी मक्खियां या चींटियां आकर्षित ना हो। सूरजमुखी व औषधीय पौधों के पास रखें बॉक्स। फ्लोरा फूलों वाले क्षेत्र की मैपिंग शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए बक्सों को ऐसी जगहों के पास रखें जहां सूरजमुखी, मक्का, हरा चारा या औषधीय पौधे हों। रानी मक्खी की देखभाल। बक्से में रानी मक्खी का सक्रिय होना सबसे जरूरी है। यदि रानी मक्खी बूढ़ी हो चुकी है तो उसे नई और ऊर्जावान रानी मक्खी से बदलें ताकि अंडों का उत्पादन सही रहे और कॉलोनी में कामगार मक्खियों की संख्या कम न हो। वीडियो देखकर जैविक खेती की ट्रेनिंग ली। गोबर और गौमूत्र से तैयार की खाद, 10 एकड़ में सालाना कमा रहे 10 लाख रुपए। किसान संदीप ने प्याज, धनिया, गोभी, तोरी और घिया के खुद के बीज तैयार किए। हिसार के गांव चूली देसावली के किसान संदीप कुमार करीब 20 साल से परंपरागत खेती कर रहे थे। गांव में गेहूं, कपास, ग्वार, सरसों आदि का फसल चक्र ज्यादा चलता है। इनमें खाद व फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के कारण खेती में ज्यादा बचत नहीं निकल रही थी। करीब 8 साल पहले संदीप ने YouTube पर रोहतक के प्रगतिशील किसान राम सिंह का वीडियो देखा, जिसमें वे ऑर्गेनिक तरीके से खेती के टिप्स बता रहे थे। यहीं से संदीप ने भी ऑर्गेनिक खेती करने की ठानी। 10 एकड़ के फॉर्म में शुरुआत में आधा एकड़ जमीन पर सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती शुरू की। राम सिंह से मोबाइल पर बात करके टिप्स लेते और सब्जियों में उसी तरीके से खाद देते। इसके बाद कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत के गुरुकुल से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग ली। अब संदीप
अपने 10 एकड़ के खेत में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। करीब 10 लाख रुपए की आमदनी सालाना हो रही है। संदीप बताते हैं कि गोबर और गोमूत्र की खाद तैयार करके सिर्फ इसी खाद का प्रयोग वे खेत में कर रहे हैं। यह खाद भी सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर सब्जियों की फसल को देते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियां प्राप्त करते हैं। मंडी में भी अब उनके खेत की ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर किसानों को कर रहे जागरूक। संदीप ने बताया कि वे किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जागरूक कर रहे हैं, साथ उनको फेसबुक के जरिए टिप्स देते हैं। किसान उनके खेत में आकर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। वे किसानों को सब्जियों के कल्चर भी मुफ्त देते हैं, जिसमें कंपोस्टिंग, फंगस व जीवाणु होते हैं। संदीप बताते हैं कि उसने अब तक प्याज, धनिया, गोभी, तोरी और घिया जैसी फसलों के खुद के बीज तैयार किए हैं। इनके जरिए ही वे अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। प्याज के 2 वैरायटी तैयार की है। इसमें एक फगवा रंग का प्याज है, इस वैरायटी का नाम M1 रखा है। दूसरी वैरायटी का प्याज पूरी तरह से सफेद रंग का देसी प्याज है। इसी तरह अन्य सब्जियों के बीज खुद के खेत में ही तैयार करते हैं। बीज व खाद का खर्च ना होने पर खेती का खर्च भी कम हुआ है। गन्ने की फसल में हो सकता है काली कीड़ी और पोका बॉइंग का आक्रमण। फसल पड़ जाती है पीली, ऐसा होने पर बचाव के करें उपाय। गन्ने की फसल में काली कीड़ी और पोका बॉइंग रोग का आक्रमण हो सकता है। इन कीट का नियंत्रण जरूरी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर PR काम्बोज ने बताया कि 400 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। छिड़काव घोव पर करें ताकि दिन के समय ब्लैक बग बच्चे या प्रॉड नष्ट हो जाएं। कभी कभी अष्टपदी माइट का आक्रमण होने से पत्तों पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके लिए 600 मिलीलीटर रोगो 30 EC को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। गन्ने की फसल में गर्मियों में 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण को एंट्रोजेन 50 घुलनशील पदार्थ 1.6 kg प्रति एकड़ का छिड़काव 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर करें। चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों के लिए 2-4 D सोडियम सॉल्ट 1.0 किलो प्रति ग्राम प्रति एकड़ की दर से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव बिजाई के 3 सप्ताह बाद करें। गन्ने की बीजू या नौलफ फसल में इस माह के अंत तक नाइट्रोजन वाली खाद की दूसरी मात्रा 45 केजी यूरिया प्रति एकड़ खेत से घास फूस निकालकर छिट्टे द्वारा डालें और ऊपर से हल्की सिंचाई करें। मोड़ी फसल में उपयुक्त खादों की 1.5 गुनी मात्रा का प्रयोग करें। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। मिलते हैं अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, उन्नत रहें, आबाद रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

फिल्मी दुनिया ने एक से बढ़कर एक संगीतकार हमें दिए, जिनकी इंद्रधनुषी धुनें वक्त के साथ साथ यादगार बनी और जिंदा रही। मूसीकारों की खूबी लाजवाब, शानदार, जानदार साबित हुई और उन्होंने अपने आप को अमर कर दिया। नौशाद अली, सरदार मलिक, एन दत्ता, उषा खन्ना, एस डी बर्मन, चित्रगुप्त, शंकर जयकिशन, कल्याण जी, आनंद जी, आर डी बर्मन से लेकर बप्पी लहरी, अन्नू मलिक, ओपी नैयर, ए आर रहमान, सलील चौधरी, सी रामचंद्र और विशाल शेखर, ये वो नाम हैं जो अपनी एक मुकम्मल पहचान बनाने में कामयाब रहे। ओमकार प्रसाद नैयर यानी ओपी नैयर। इनका जन्म 16 जनवरी सन 1926 को लाहौर में हुआ। इनकी पैदाइश एक साधारण परिवार में हुई। ओपी नैयर ने अपनी संगीत की यात्रा सन 1949 में फिल्म गणेश के साथ की और उसके बाद फिल्म आसमान सन 1952 में और फिल्म आर पार सन 1956 में।

सुन उन्हीं से मत्थर में फिल्म संबंध में चल अकेला चल गीत की कामयाबी ओपी नैयर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ओपी नैयर ने गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, साहिर रजानी, जानिसार अख्तर, कमर जलालाबादी, एसएच बिहारी के साथ काम करके अपने आप को एक मुकम्मल संगीतकार के रूप में मौसिकी की दुनिया में बेहतरीन जगह बनाई।

0: से।
1: गोपी नैयर ने लगभग 73 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। इसके अलावा गोपी नैयर के संगीत ने कई सारे एक्टर्स को फिल्मी दुनिया में खास पहचान दिलाई। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, गुरुदत्त, धर्मेंद्र, शशि कपूर, सुनील दत्त, जय मुखर्जी, बिस्मजीत, फिरोज खान, भारत भूषण, मधुबाला, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, साधना, मुमताज, राजश्री, रेखा, अमिता और श्यामा।

0: आया हूँ।
1: ओपी नैयर के परिवार में उनकी पत्नी, तीन बेटियां और एक बेटा रह गए हैं। भारत सरकार के डाक महकमे ने ओपी नैयर के सम्मान में 3 मई सन 2013 को एक डाक टिकट जारी की। ओपी नैयर जब अरूज पर थे, उनके पास बेशुमार दौलत थी, पर वक्त ने जब करवट ली, आखिरी दिनों में उन्हें अपने दोस्तों के पास पनाह लेनी पड़ी।

इसी दौरान 20 जनवरी सन 2007 को दिल का दौरा पड़ने से वो इस दुनिया से चल बसे। ओपी नैयर ने पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि उनके परिवार को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका जाए।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरनी और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद किरनी। आज एक ऐसा एपिसोड है जो आपकी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स की, यानी टेक्नोलॉजी से थोड़ा ब्रेक लेने की। मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इनके बिना आज जिंदगी अधूरी लगती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये टेक्नोलॉजी हमें आज़ाद बना रही है या एक इनविजिबल केज में बंद कर रही है? चलिए इसके बारे में गहराई से समझते हैं।

टेक्नोलॉजी और एडिक्शन। हर दिन एक इंसान 3 से 4 घंटे फोन स्क्रीन पर बिताता है। नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया, बिना फोन के रहने का डर। डोपामाइन इफेक्ट, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग को एडिक्टेड बना देती है। कंपैरिजन कल्चर, सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ से असंतुष्ट रहना। डिजिटल डिटॉक्स क्यों जरूरी है? मेंटल हेल्थ का असर, ज्यादा स्क्रीन टाइम एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट, फोकस और कंसंट्रेशन कम होता है। रियल लाइफ कनेक्शन खत्म होते हैं, फैमिली और फ्रेंड से वक्त कम हो जाता है। सोल्यूशन, डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? टेक्नोलॉजी फ्री जोन्स, बेडरूम और डाइनिंग टेबल पर फोन का यूज ना करें। अनप्लग संडेज, एक दिन सोशल मीडिया से ब्रेक लें और रियल लाइफ इंटरेक्शंस का मजा लें। स्क्रीन टाइम लिमिट, हर ऐप के लिए फिक्स्ड टाइम सेट करें। आउटडोर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज में समय बिताइए, जैसे वॉकिंग, रीडिंग या मेडिटेशन। डिजिटल एडिक्शन के लक्षण, अगर आप बिना फोन के बेचैन महसूस करते हैं या सोशल मीडिया नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहते हैं तो ये डिजिटल एडिक्शन के संकेत हो सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स के फायदे, इससे आपकी नींद बेहतर होती है, स्ट्रेस कम होता है और आप अपने आसपास के लोगों से बेहतर संबंध बना पाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? छोटे ब्रेक्स लीजिए, रोजाना कुछ घंटे बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताइए। नोटिफिकेशन बंद करें, सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशन ही ऑन रखिए। हॉबीज में समय बिताइए, पढ़ाई लिखाई या किसी नए हॉबी में अपना समय व्यतीत करें। कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग जरूरी है, लेकिन उसके गुलाम मत बनिए। कभी एक दिन बिना फोन के गुजारिए और देखिए आपको कितनी नई चीजें महसूस होंगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी डिजिटल जिंदगी का समझदारी से उपयोग करें। इसके साथ ही आपसे लेती हूँ विदा, अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, नमस्कार।

और आना शुरू कर देता है तो ये जीवन में एक बोझ के समान हो जाता है। हमें पता भी नहीं लगता ये बोझ कब बन चुका होता है, क्योंकि लालसा ने हमारी आंखें अंधी कर दी होती है, हमें दिखता ही नहीं है। हम हर चीज चाहते हैं, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले। एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज मिलनी चाहिए। तो ललदेत इन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, इन इच्छाओं को इस मिठास से जोड़ती है और कहती है कि ये जो इच्छाएं हैं ये बड़ा बोझ क्रिएट कर देती है हमारे ऊपर। और फिर कहती है कि देह कान होल गोम भाई क्या कि हो, मतलब फिर ये बोझा इतना भारी हो जाता है हम पर कि जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, जिस चीज के लिए मैं इस जीवन में आया हूँ, वो चीज मुड़ना शुरू हो जाती है, वो चीज उस भार के नीचे दब जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और फिर कहती है गौरसुंद वनुन रावन त्योल प्यों, गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि तो उस दिशा की ओर चल, उस परमात्मा को खोजने चल। मुझे वो दिशा अच्छी तो लगी, लेकिन उसको करने के लिए मुझे इस दुनिया से अपने आप को खींचना है बाहर। अब दुनिया से अपने आप को खींचना बाहर किसी को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा तकलीफ देह है, ये सबके लिए बड़ा बड़ा कष्टकारी होता है। तो इसलिए फिर कहती है फलरोस खोलगोम हाई क्या की हो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं इस दिशा में जाऊं या मैं इस दिशा में रहूं, मैं छोड़ू या पकड़े रखूं। तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है, लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो गए।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

वो देखो चांद निकल आया है, शायद जमीन पे उतरने का इरादा है। हमारी राहें मुनव्वर होंगी, अंधेरे अब दूर हो जाएंगे। अब रोशन होगा यह जहां और हम ढूंढेंगे वो चेहरे जो गुम हो गए थे बरसों पहले।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारू के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाएं।

चुपके चुपके तुम्हें निहारता रहा देर तक। मेरे आगोश में कभी पनाह तो लीजिए जरा, शायद सिमट जाए इस शब की तन्हाई।

खुशबू का एहसास दिलाती हो और छोड़ जाती हो वीरान पत्थरों की बस्ती में। इकरार भी करते हो और लौट के आते भी नहीं हो, चंद फासले ही दरमियां, पर फिर भी दूरियां मिटती नहीं।

खूबसूरत रंगों से सराबोर जिंदगी के हैं मुख्तलिफ रंग। छू कर दो, देखिए जरा इन्हीं रंगों से महकेगी आपकी दुनिया। वो जो पीछे छोड़ आए सतरंगी दुनिया, भला उसे याद करने की जरूरत ही क्या। पर उसे आप दिल के निहाखानों में महफूज तो रख सकते हैं।

मौसमों का बदलना अपनी जगह सही है, और यही वजह है तभी शायद कायनात का संतुलन बरकरार है। अब जरा आप महसूस करिए मौसम बहार की आमद। हवाओं में ताजगी कहीं से गिरते आबशारों से निकलता मधुर संगीत, और मुसाफिर चलते जीनत बनाते पगडंडियों की कच्ची फिसलती रेत पे अपना रास्ता बनाते राही हमराही के संग मंजिल की तलाश में बेपरवाह होकर यही सोच लिए छू जाएंगे अब

0: दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आज के कार्यक्रम से इजाजत। नमस्ते।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। कुछ धुनें सिर्फ कान नहीं सुनते, दिल महसूस करते हैं। कुछ गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, वो यादें बन जाते हैं। और कुछ फनकार जैसे वक्त के उस मोड़ पर मिलते हैं जहां हर सुर एक कहानी बन जाती है। पेश है कार्यक्रम सरगम। आज के सरगम समर्पित है एक ऐसे ही संगीतकार को जिन्होंने बॉलीवुड के संगीत में ताल का जादू बिखेरा, ओपी नायर। आए चलिए मेरे साथ एक ऐसे गीतों की दुनिया में जहां नायर साहब के सुर, गीतकारों के बोल और गायकों के जज्बात मिलकर बनाते हैं संगीत का एक रंगीन जादूगर सफर सरगम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं CID फिल्म के गाने से, जिसके गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, गायक रफी, आशा भोसले और शमशाद बेगम, संगीत ओपी नायर।

अब पेश है गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का गाना, जिसे गाया है गीता दत्त ने, संगीत ओपी नायर का और फिल्म का नाम है हावड़ा ब्रिज।

अब पेश है ओपी नायर का संगीतबद्ध गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने, फिल्म सीआईडी से, और उसके गीतकार है जान निसार अख्तर।

0: हाथों में।
1: अगली पेशकश है गीतकार साहिर लुधियानवी का गाना, जिसे गाया है रफी और आशा भोसले ने, संगीत ओपी नायर, और फिल्म है तुम सा नहीं देखा।
2: देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

0: कुछ कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
2: पेश है रफी और आशा की आवाज में एक देसी रंग, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है ओपी नायर। फिल्म का नाम है नया दौर।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, आपकी जिंदगी की रवानी। जारी है कार्यक्रम सरगम। लीजिए पेश है कश्मीर की गली का गाना, गायक रफी और आशा भोसले, संगीत दिया है ओपी नायर ने और इसके गीतकार है SH बिहारी।

सभी श्रोताओं की नज़र एस एस बिहारी का लिखा गाना जिसका संगीत दिया है ओपी नायर ने, गाया आशा भोसले और शमशाद बेगम ने, फिल्म किस्मत से।

लीजिए आप सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का गाना फिल्म मेरे सनम से, संगीत ओ भी

अब पेश है इस कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म माया से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, इसका म्यूजिक दिया है सलील चौधरी ने और इसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

आज के सरगम में हमने सिर्फ गाने नहीं सुने, हमने एक ऐसे फनकार की जज्बात महसूस किए जो ताल से मोहब्बत करता था और धुन से रिश्ता निभाता था। इसके साथ ही सरगम कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सरगम के संग। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहेंगे हमारे मेहमान राजेंद्र रहबर। आप किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं। रहबर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया जी।
0: आपके कलम से निकली एक नज्म है, तेरी खुशबू में बसी खत।
1: मैं जलाता कैसे?
0: हाँ बिल्कुल, हम अपनी बातचीत इसी नज्म से शुरू करते हैं।
1: शुक्रिया।

0: जाहिर है कि जब इस तरह के गाने सुनते हैं जैसे ये गाना अभी आपने आपकी चॉइस पे हमने सुनाया, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, तो इस तरह का आपका मिजाज है शेर लिखने का। कुछ किताबें होंगी जिनमें इस तरह के शेर दर्ज हैं?
1: हाँ, मेरी 7-8 किताबें छपी हैं। पहली किताब तो थी मेरी आगोश गुल, वो एक तज़किरा था शिमला हिल्स के 22 उर्दू शायरों का। उसमें मैंने जिक्र किया है, उनका कलाम शाया किया है, उनके फ़ोटो शाया किए हैं, उनके हालात ज़िंदगी शाया किए हैं। उसके बाद फिर 1962 में मेरा अपना मजमूआ कलाम कलस के नाम से शाया हुआ था। उसके बाद 75 में मल्हार नाम से मेरी एक किताब देवनागरी स्क्रिप्ट में शाया हुई थी। फिर 78 में मेरी किताब और शाम ढल गई के नाम से उर्दू में शाया हुई थी, इसे बिहार उर्दू अकेडमी ने अवार्ड दिया था। और फिर 97 में मेरी एक किताब ज़ेबे सुखन के नाम से उर्दू में शाया हुई थी, इसे लैंग्वेज डिपार्टमेंट पंजाब ने बेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ द ईयर 1997 करार देते हुए मुझे अवार्ड दिया था। उसके बाद मेरी किताब शाया हुई, उसका नाम था तेरे खुशबू में बसे खत। अच्छा, ये तेरे खुशबू में बसे खत नाम मैंने कैसे रखा, ये भी एक दिलचस्प वाक्या है कि टी सीरीज ने अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में एक कैसेट निकाली, उसका नाम रखा उन्होंने तेरे खुशबू में बसे खत। उसमें मेरी पोएम भी है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। फिर उसके बाद HMV ने सारे गामा ने एक निकाली एल्बम, उसका नाम भी रखा तेरे खुशबू में बसे खत। तो फिर मेरा मजमूआ कलाम छपने वाला था उन दिनों, मैंने भी नाम रख दिया तेरे खुशबू में बसे खत। तो उसके बाद फिर 2008 में मेरी एक किताब याद आऊंगा, हिंदी और उर्दू दोनों ऑडिशन हैं उसके, वो छपी है।
0: आमतौर पे हम कहते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, आप इस बुलंदी पे हैं, आप ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे?
1: मेरी जो अहलिया हैं वो शायर तो नहीं है, भजन वगैरह गाती
0: लेकिन आपको सपोर्ट तो करती होंगी।
1: हाँ, मेरे मिलने वाले जो आते हैं शायर लोग बड़ी तादाद में आते हैं।
0: यहाँ पे आपने एहतियात बरतना होगा क्योंकि कहीं वो नाराज ना हो जाए।
1: उनको चाय वगैरह पिलाने की जिम्मेवारी मेरे दोस्तों को नहीं होती।
0: रहबर साहब, कभी आपको गुस्सा आता है?
1: बहुत कम। कहते हैं जो दरवेश लोग होते हैं ना, वो अपना गुस्सा अपनी जान पर ही निकालते हैं, तो मैं भी शायद ऐसा ही करता हूँ।
0: जी, उम्र के इस पड़ाव में हैं आप और यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी क्या कुछ काम हो रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है?
1: जो नज़म मैंने कहनी है वो अभी नहीं हुई है शायद, तो एक शेर भी मेरा इस तरफ इशारा करता है। वो शेर यूँ है, सुनने को जिसे गोश बार आवाज़ है दुनिया, सुनने को जिसे गोश बार आवाज़ है दुनिया, वो गीत अभी साज के पर्दों में छुपा है।
0: जी,
1: तो उम्मीद रखनी चाहिए शायद वो गीत भी कभी साज के पर्दों से बाहर आए। तो मेरी आमतौर पर ये आदत है कि मैं सुबह के वक्त 3 बजे 3:30 बजे उठ के लिखता हूँ, और जो चीज़ उस वक्त लिखी जाती है वो बहुत अच्छी होती है, और जो चीज़ लिखने की तमन्ना है वो किस वक्त बाहर आ जाएगी ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो शायराना तबीयत या परमात्मा के हाथ में ही है ये सारी बात।
0: जी जी जी, आपका कोई मनपसंद शेर होगा जो आप यहाँ कहना चाहेंगे, कोई आपकी?
1: पिछले दिनों मैंने एक अजीब रंग में गजल कही है, जो मैंने जिस रंग मैंने आज तक नहीं कही, यानी हास्यरस में। उर्दू शायरी संजीदा शायरी होती है आमतौर पर, और मैं भी संजीदा शायरी ही लिखता रहा हूँ, लेकिन एक मजाया नज़म पता नहीं कहाँ से गजल उबर के आ गई पिछले दिनों, बिल्कुल नई है, कि दोस्तों से फरेब खाया कर और फिर दोस्ती निभाया कर। दूसरा शेर है कि हो के दिन भर के काम से फारिग, हो के दिन भर के काम से फारिग, शाम को मैकदे भी जाया कर।
0: क्या बात है,
1: मशवरे हैं इसमें, गलत मशवरे ज्यादा है। हो के दिन भर के काम से फारिग, शाम को मैकदे भी जाया कर।

0: और जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, एक दिन छोड़कर नहाया कर।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
0: जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, एक दिन छोड़कर नहाया कर। एक शायर को मैंने आज कहा, एक शायर को आज मैंने कहा। शायरों को आदत होती है जबरदस्ती शेर सुनाने शुरू कर देते हैं।
1: जबरदस्ती।
0: हमारे हमारे एक शायर दोस्त से, प्रोफेसर बिमल कृष्ण अश्क, वो कहा करते थे, लो रैपर भाई पांच गज़लें सुनो, तो पांच गज़लों के लिए वो बुक कर लेते थे। तो ये शेर उसी तरफ इशारा करता है कि एक शायर को आज मैंने कहा, बिन कहे शेर मत सुनाया कर, और देख कर राह में हसीनों को, रास्ते से भटक न जाया
1: क्या
0: कर।
1: बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात।
0: और एक शेर और याद आ गया इसका मुझे, वो भी सुन लीजिए, कि सच्चे दिल से तुम्हें दुआ देंगे, सच्चे दिल से तुम्हें दुआ देंगे, हम फकीरों को कुछ खिलाया कर।
1: क्या बात है। जी जी जी आपकी नजर में औरत क्या है, एक तख्लीकार होने के नाते?
0: उर्दू शायरी जो है, जहाँ तक उर्दू शायरी का तअल्लुक है, मैं तो उर्दू से ही वाबस्ता हूँ और उर्दू ही का खादिम हूँ। उर्दू का मिजाज जो है, ये लड़कपन से आशकाना रहा है और रहेगा। अगर ये रोमांटिक शायरी को हटा दिया जाए उर्दू शायरी में से, तो मेरा ख्याल बाकी जो है वो इतना अपीलिंग नहीं रह जाता। इसलिए औरत का जिक्र हमारे शेरों में अक्सर होता है, और हमारे तमाम बड़े शायरों ने रोमांटिक शेर लिखे हैं, और गालिब ज़ौक मोमेंट से लेकर आज तक भी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लिखते आ रहे हैं।
1: और मुझे लगता है कि कामयाबी भी हासिल होती है इस तरह के शेर।
0: ये जो रोमानी शायरी होती है, अल्टीमेटली यही जिंदा रहती है,
1: क्योंकि आपके जो जितने भी आपकी लिखाई हम पढ़ते हैं, उसमें भी इस तरह का जिक्र है, कहीं कहीं जगह पे मिलता है हमको।
0: ये एक ऐसा जज्बा है जो हर वक्त इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा कायम रहता है, वो किसी शक्ल में भी हो, तो ये भी मोहब्बत का एक इजहार ही है। लेकिन शेर को पढ़ते वक्त आप उसे चाहे जिनसी मोहब्बत की तरफ ले जाएं या परमात्मा की मोहब्बत की तरफ ले जाएं, दोनों तरफ उनके मीनिंग निकलते होते हैं आमतौर पर।
1: जी जी जी एक तो जगजीत सिंह साहब ने आपकी नज्म को अपनी जुबान, अपनी मीठी सुरीली आवाज दी, इसके अलावा किसी फनकार से आपका कोई कलाम?
0: अनुराधा पौडवाल ने गाया है, और एक नॉर्वे में रहते हैं गायक, जहान दत्ता उनका नाम है, उन्होंने मेरी एक गजल गाई है। वो उसका नाम गजल यूं है कि बस चंद ही दिनों के थे डेरे चले गए, खाना बदोश लोग सवेरे चले गए, हाथों में अपने जाल सुनहरी लिए हुए, गहरे समंदरों के मछेरे चले गए, कुछ मैं कदे की समत गए झूमते हुए, कुछ मन चले फकीर के डेरे चले गए। ये गजल उन्होंने गाई है। उसके अलावा ये पठानकोट में बड़े मशहूर एक गायक रहते हैं, कुलदीप राय, वो भी मेरा कलाम गाते हैं, तीन चार चीज़ें गाते हैं वो मेरी, आगे उनके शागिर्द भी गाते हैं।
1: जी जी जी आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं, क्या इस तरह का आपने कोई आगे रखा है कि कोई स्कूल या कोई अटेंड करेंगे जहाँ पे लोग आपके पास सीखने आए?
0: ऐसे है कि ज़ाती तौर पर लोग आते रहते हैं, मेरे पास कोई स्कूल वाला सिस्टम नहीं है। जो आता है और मुझसे कोई मशवरा व तलब करता है, तो वो मैं उसे ज़रूर बताता हूँ जितना मुझे आता है। तो मैं कोई उस्ताद शायर नहीं समझता अपने आप को कभी, क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद हो चुके हैं, हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं दोस्ताना मशवरे ज़रूर देता हूँ, और जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें अपना शागिर्द नहीं करता कभी, सिर्फ दोस्त समझता हूँ उन्हें।
1: जी रेवर साहब, आपकी चॉइस पे कोई गाना हो जो यहाँ हमारे सुनने वालों को हम पेश करें?
0: लग जा गले, ये लता मंगेशकर जी का है, लग जा गले।
1: ये गाना बड़ा शानदार है, सुरीला गाना है।
0: हाँ जी,
1: तो ये गाना आपको पसंद है?
0: हाँ जी,
1: सुनना चाहेंगे?
0: जरूर सुनना चाहूंगा, और मेरे जो श्रोता हैं वो भी सुनेंगे तो खुश होंगे इसको।

0: चलते चलते चूँकि हमारे इस प्रोग्राम का समय मुकम्मल हुआ चाहता है, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे जो आजकल के शायर हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम होगा आपकी तरफ से?
1: उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो छंद शास्त्र ज़रूर सीखें। खुली शायरी भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन इतनी नहीं जितनी छंदबद्ध शायरी को पसंद किया जाता है। उसमें जब रदीफ और काफ़िया आते हैं, टणकता हुआ काफ़िया हो, जैसे ये मेरे ख्याल सा है, मेरे ख्वाब जैसा है, ख्वाब इसमें काफ़िया है, जैसा है रदीफ, मेरे ख्याल सा है, मेरे ख्वाब जैसा है, तुम्हारा हुस्न महकते गुलाब जैसा है। तो ये जब काफ़िया और रदीफ आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, और खुली कविता हो तो वो इतनी प्रभावित नहीं करती सुनने वालों को। और जो शायर लोग लिखेंगे छंद शास्त्र के अंदर रह के, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जाती है दूसरों की निस्बत।
0: जी जी, ड्राइवर साहब आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, आप हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके हैं काफ़ी मशकूर, बहुत बहुत शुक्रिया।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुक्र

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: बेकरार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

पर तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

0: साथ चलन की तैयारी कर ले,
1: इधर ले।
0: अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला गेट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत। सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता
4: असले पौन पटाके सुन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर

आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त कृष्णा, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। धान की नर्सरी तैयार करने का सही समय मध्यम अवधि की 30 मई और बौने किस्मों के लिए 30 जून तक करें बिजाई। बीजोपचार के दौरान रोगग्रस्त बीज और आभासी कंडुआ के पिंड ऊपर तैरते समय निकालकर नष्ट कर दें। धान की कम अवधि वाली बौने किस्मों और मध्यम अवधि वाली किस्मों की बिजाई के लिए नर्सरी लगाने का यह उपयुक्त समय है। मध्यम अवधि के लिए 30 मई और बौने किस्मों के लिए 30 जून तक नर्सरी लगा लें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर काम्बोज ने बताया कि रोगों से बचाव के लिए 10 लीटर फफूंद नाशक घोल, 10 ग्राम कार्बन डाइजिम, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन व 10 लीटर पानी में 10 से 12 किलोग्राम बीज को 24 घंटे भिगोकर उपचारित करके ही बिजाई करें। 10 किलोग्राम बीज को 10 लीटर नमक के घोल, 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम नमक में डुबोएं और धीरे धीरे चलाएं। हल्के रोगग्रस्त बीज और आभासी कंडुआ के पिंड ऊपर तैरने लगते हैं, जिन्हें निकालकर नष्ट कर दें। नीचे बैठे हुए भारी बीज को स्वच्छ पानी से 3 से 4 बार अच्छी तरह धो लें। खरपतवार नियंत्रण के लिए 15 दिन बाद छिड़काव करें। नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण के लिए बिजाई के 1 से 3 दिन बाद 600 ग्राम सोफिट प्रोटीलाक्लोर 30 ईसी प्रति एकड़ को 60 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर प्रयोग करें। 1.2 लीटर ब्यूटाक्लोर ईसी मचेंटी डक्लोर हिल्टाक्लोर या थाबो बेनकार्ब सेटन इसी को 30 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर अंकुरित धान को बोने के 6 दिन बाद 1 एकड़ नर्सरी में डाल सकते हैं। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 100 मिलीलीटर बिस्पायरी पैक सोडियम नॉमिनी गोल्ड 10 SL को 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के 15 दिन बाद प्रति एकड़ छिड़काव करें। प्रति एकड़ 10 से 12 गाड़ी गोबर की खाद डालें। धान की नर्सरी उगाने के लिए 10 से 12 गाड़ी गोबर की खाद, 22 किलोग्राम यूरिया, 65 किलोग्राम SSP तथा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ डालें। फिर 2 सप्ताह बाद 22 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ नर्सरी में डालें। सीधी बिजाई पर 35% पानी की बचत, मशीनों पर मिलेगा अनुदान। अब की बार प्रदेश में 22 जिलों में 5 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले साल 4 लाख एकड़ था। धान की सीधी बिजाई पर किसानों को प्रति एकड़ 4,500 रुपए देने के साथ 600 मशीनों पर 40,000 रुपए 50% अनुदान मिलेगा। इच्छुक किसानों को मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। संबंधित कृषि सहायक और अन्य क्षेत्रीय अधिकारी जिलों में प्रशिक्षण आयोजित कर किसानों को बीज से धान की खेती के लिए प्रेरित करेंगे। योजना की मॉनिटरिंग व लक्ष्य को पाने के लिए 13 अधिकारियों तक की नियुक्ति की गई है। 15 जुलाई तक DDA DSR का भौतिक सत्यापन कर 17 जुलाई तक मुख्यालय को भेजेंगे। 5 एकड़ से अधिक वाले किसानों का सत्यापन क्रॉस चेक DDA द्वारा स्वयं या उनके प्रतिनिधि करेंगे। पिछले 3 वर्षों में किसी भी विभागीय सब्सिडी योजना के तहत मशीनों पर कोई लाभ ना मिलने व फसल अवशेष ना जलाने वाले किसानों को ही मशीन पर अनुदान मिल सकेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के SDO डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि धान की बिजाई करने पर करीब 30 से 35% तक पानी की कम लागत के साथ मजदूरी आदि खर्च तक कम होता है। मानसून में घर पर उगाएं सब्जियां, सेहत सुधरेगी और बचत होगी।
छत और बालकनी में नीम ऑयल और जैविक खाद से करें पौधों की देखभाल। आधुनिक समय में रासायनिक खादों व कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग ने मानव स्वास्थ्य के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में अपने घर की छत, बालकनी या आंगन में वैज्ञानिक विधि से तैयार किचन गार्डन यानी गृह वाटिका शुद्ध और पौष्टिक सब्जियों का एक बेहतरीन विकल्प है। मानसून सीजन की सब्जियों की बुवाई के लिए यह सबसे उपयुक्त है। डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, सहायक निदेशक एवं केंद्र प्रभारी NHRDF करनाल ने बताया कि यदि गृह वाटिका की शुरुआत की जाए तो न केवल परिवार को साल भर रसायन मुक्त ताजी सब्जियां मिलेंगी बल्कि आर्थिक बचत भी होगी। बेल वाली सब्जियों को 15 इंच गहरा व मिर्च टमाटर को 12 इंच गहराई तक बोएं। बीज उपलब्धता, प्याज, भिंडी, घिया, लौकी, तुरई, करेला, पालक, ग्वारफली, लोबिया, मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सल्लारो द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली किचन गार्डन किट में इन सभी प्रमुख सब्जियों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज उचित मात्रा में दिए जाते हैं। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किचन गार्डन के लिए सबसे पहले एक आदर्श पॉटिंग मिक्स मिट्टी का मिश्रण तैयार करना बेहद जरूरी है। मिश्रण का अनुपात 50% सामान्य उपजाऊ मिट्टी, 30% गोबर की खाद या केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट और 20% रेत या कोकोपीट को आपस में मिला दें। गमलों का चयन, बेल वाली सब्जियों जैसे घिया, तुरई के लिए कम से कम 12 से 15 इंच गहरे गमले या ग्रो बैग का उपयोग करें। मिर्च और टमाटर के लिए 10 से 12 इंच के गमले उपयुक्त रहते हैं। बुवाई की तकनीक, सीधे बोए जाने वाले बीज भिंडी घिया तुरई को मिट्टी में 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक की गहराई पर लगाएं। टमाटर बैंगन और मिर्च के लिए पहले किसी छोटे कप या ट्रे में पनीरी यानी पौध तैयार करें, फिर 20 से 25 दिनों बाद उन्हें बड़े गमलों में रोपित करें। पोषण प्रबंधन, पौधों के बेहतर विकास के लिए हर 15 से 20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ी वर्मी कंपोस्ट या सूखी पत्तियों की खाद डालें। रसोई से निकलने वाले गीले कचरे से बनी कंपोस्ट खाद इसके लिए सर्वोत्तम है। प्राकृतिक कीट नियंत्रण, खरीफ के मौसम में नमी के कारण कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए रासायनिक दवाओं के स्थान पर नीम के तेल, नीम ऑयल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त घर पर ही खट्टी लस्सी, लहसुन और हरी मिर्च का अर्क तैयार करके पौधों पर छिड़कें और यह पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गर्मी में गन्ने की फसल में खाद का प्रयोग बढ़ा सकता है रोग। किसानों के लिए अच्छी सिंचाई करना फायदेमंद। भीषण गर्मी में गन्ने की फसल में सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर अधिक खाद का प्रयोग रोग पैदा करने की वजह बन सकता है। पर्याप्त सिंचाई से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जगत बताते हैं कि अभी पारा 45 डिग्री से अधिक चल रहा है। ऐसे में पौधों में नमी कम हो गई है जिसका विपरीत प्रभाव उनके पोषण पर पड़ रहा है। ऐसे में अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो पौधों को खाद को सहन करने के लिए और भी अधिक नमी की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे वह अपने आसपास की नमी को भी जल्दी सोखने लगेगा। यह प्रक्रिया 72 घंटे तक चलेगी, यानी इस समय की अवधि में पौधों के आसपास की नमी भी जल्दी खत्म हो सकती है, जिसके बाद पौधा सूखने लगेगा। इसमें तुरंत सिंचाई करने पर भी पौधा जल्दी से पहले जैसा पोषण को रिकवर नहीं कर पाता। पहले से नमी की
कमी होने की इस स्थिति में शत्रु कीट का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे पौधा रोग की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए फिलहाल खाद का प्रयोग करना उतना उचित नहीं है, जिसका असर उत्पादन पर भी पड़ेगा। इस वजह से वर्तमान हालातों में फसल में पर्याप्त सिंचाई करने की जरूरत है। जरूरत के समय घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर पौधों की बढ़ावकर कम हो रही है तो इस स्थिति में घुलनशील उर्वरक का प्रयोग कम मात्रा में किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि छिड़काव में पहले अच्छी सिंचाई करके फसल में पर्याप्त नमी हो चुकी हो। ऐसा करने पर ही छिड़काव से लाभ हो सकता है। अगर पहले सिंचाई नहीं की है तो छिड़काव से पौधों को नुकसान हो सकता है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर से 7056413010। तो मिलते हैं अगले कृषि समाचार में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, उन्नत रहिए। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। जय भारत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
3: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक्स है, इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है।
0: जी।
1: तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है। और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रक्त इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते।
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है,
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात को रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर रहता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल्स में एनरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है।
0: जी।
1: जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4-6 किलोमीटर प्रतिदिन, एटलीस्ट 4-5 टाइम्स अ डे अ वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये है आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर प्रोग्राम सरगम में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखा सफर फिल्मों की दुनिया से। ये है संगीत का सफर जो आपके दिल को छू जाएगा, वो हसीन लम्हे जो हमेशा याद रहेंगे। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हम लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया गीत। संगीत खयाम का है, बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और फिल्म का नाम है त्रिशूल।

अभी आप सब सुन रहे थे फिल्म सिलसिला का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया था शिव हरि ने और बोल लिखे थे हसन कमल ने। लीजिए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है सच्चाई और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

प्रोग्राम का अगला नगमा आप सब की नजर फिल्म दूसरा आदमी से। म्यूजिक दिया है राजेश रोशन ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनाते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे स्वर दिए हैं किशोर और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है कल्याण जी आनंद जी का संगीत दिया हुआ गाना, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है प्रोफेसर प्यारेलाल और जिसे लिखा है राजेंद्र किशन ने।

0: प्रोग्राम की अगली पेशकश एक महल हो सपनों का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गाने को संगीत से सजाया है रवि ने और इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।
1: एक महल हो

आनंद बख्शी का लिखा सुंदर गाना मिस्टर नटवरलाल फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अजनबी से, जिसे म्यूजिक दिया है R.D. बर्मन ने।

अब पेश है लावारिस फिल्म का गाना, जिसके बोल लिखे हैं अनजान ने, म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गाने को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 3, जो आधारित था पुराने फिल्मी गीतों पर। पेश किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
3: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

नमस्ते दोस्तों, आज की इस प्रोग्राम में हम आपको अपनी पसंद के चंद नगमे सुनवाएंगे। हमें उम्मीद है हमारी पसंद आप जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मैं हूं इस कार्यक्रम में आपका मेजबान रमेश मराठा।

हम हैं यहाँ मुसाफिर, चलते हैं बेदर्द मौसम में अपनी अपनी मंजिल की तलाश है। शायद कभी मील के पत्थर को छूते और तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भरते, तुम शरीक सफर बन पाते, पर ये राहें हैं दुश्वार और पथरीले, इन पगडंडियों में फिसलन है। और अब ये रास्ते गीले हो चुके हैं।

0: एक एहसास है। मोहब्बत एक एहसास है, खुशबू की तरह। सिर्फ इसे महसूस करने की जरूरत है। इन बुझी हुई महफिलों में शायद ये रौनकें यूं ही बरकरार रहें, गर वक्त से पहले तुम लौट आओ। तुम अक्सर कहा करते थे, लौट आऊंगी, फिर से तुम्हारे आगोश में पनाह लूंगी और एक साथ मोहब्बत के एहसास को महसूस करने की हम दोनों कोशिश करेंगे,
1: तुम जो मिल गए हो,
0: ताकि अधूरे वादों को निभाकर हम इन्हें पाए तकमील तक पहुंचा सके। यही मेरी रब से इल्तिजा है।

फिर से जब तुम लौट आओगे हमारी दुनिया में, ये हवाएं फिजाएं इन कपकपाती धड़कनों को हम संभाल लेंगे। यरकानी पत्तों के इस मौसम में अपनी मखमली दुआओं से बज़्म इलाही में शायद हमारी इल्तिजा, हमारी फरियाद सुनी जाए। हमने ये भी सुना है रब यही बसता है और उसकी रहमत का कोई हिसाब नहीं।

आसपास होती साथ साथ, शायद फुर्सत में हम तुम्हें चाहते, पर काश फुर्सत होती दीवानेपन की हदों को दरकिनार कर, ऐसा ख्वाब अपनी आंखों में बसाने से क्या हासिल जिस ख्वाब की ताबीर न हो। मिला तुमसे जो भी वो खामोश पानी की लकीरें जैसे ही है।

मुस्कुराहट, अनसुलझी अनसुलझी सवालात, शब रोज ख्वाबों में दस्तक देना, पथरीले रास्तों को हरा कर मुझे मुझे मेरे भटकाव से मुक्त करना, यही तेरा एहसान था, तुम्हारा करम, तुम्हारी नवाजिश थी।

दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

जी हाँ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:40। श्रोताओं, FM 90.0 MHz पर ये है आपका अपना पसंदीदा स्टेशन रेडियो वितस्ता, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी। वक्त की सुइयां गवाही दे रही हैं कि अब हमारे आज के सफर को यहीं रोकने का समय आ गया है। दिन भर सुरों की लहरों, ज्ञान की बातों और आपके साथ के अनमोल पलों के बाद अब रेडियो वितस्ता अपने आज के इस खूबसूरत प्रसारण को विदा कहने जा रहा है। लेकिन जाने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन बेहद खास है, आइए डालते हैं आज के विशेष दिन पर एक विस्तृत नजर। वैश्विक एकता का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आज यानी 21 जून को भारत सहित पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे बेहद उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य, शांति और सद्भावना का एक महाउत्सव बन चुका है। कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। पहला, भारतीय परंपरा का वैश्विक उपहार। भारत योग की सदियों पुरानी ऋषि परंपरा की एक अनमोल देन है। आज के दिन दुनिया के कोने कोने में, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हों, तपते रेगिस्तान हों या आधुनिक शहरों के पार्क, करोड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर योग की विभिन्न मुद्राओं और प्राणायाम का अभ्यास कर लिया। दूसरा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव और बीमारियां आम हो चुकी हैं, वहां योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। ये शरीर, मन और आत्मा के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित करता है। और तीसरा, वैश्विक एकता का माध्यम, वसुंध कुटुंबकम, यानी पूरी धरती ही हमारा परिवार है। इस भावना को योग ने सच कर दिखाया है। जात पात, धर्म और सीमाओं के बंधनों को तोड़कर आज पूरी दुनिया एक सुर में योग के जरिए आपस में जुड़ी हुई नजर आ रही है। रेडियो वितस्ता की पूरी टीम आप सभी श्रोताओं को ये अपील करते हैं कि योग को केवल आज के दिन के लिए सीमित ना रखें, बल्कि इससे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हर दिन कम से कम 15 या 20 मिनट योग पर जरूर दें, प्राणायाम करें और बाकी जो आसन है उन्हें भी करें। कम से कम सूर्य नमस्कार करें और उसके अंदर 12 क्रियाएं हैं, यानी 12 आसन आप उसके साथ करते हैं। यह था आज का विषय और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे और सुनते रहेंगे FM 90.0 आज की इस खूबसूरत शाम को, इस रेडियो वितस्ता के आज के सफर को इस खास शायरी के साथ मुकम्मल करते हैं। जी हाँ, पंक्तियां यूं है, दिलों में प्यार की अमन की हर पल आस जगाता है। दिलों में प्यार की अमन की हर पल आस जगाता है, सुरों की मीठी लहरों से रिश्ता गहरा बनाता है। सदा बहती रहे खुशियों की धारा आपके जीवन में, सदा बहती रहे खुशियों की धारा आपके जीवन में, यही दुआ लेकर रेडियो वितस्ता हर रोज आता है। यही दुआ लेकर रेडियो वितस्ता हर रोज आता है। ये थी आज की पंक्तियां और आज का विषय। चलते चलते जल्दी से आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 22 जून 2026 सोमवार को जो कार्यक्रम आपके लिए हम लाए हैं वो ये है। 5:58 पर वंदे मातरम की शुरुआत करके प्रकाश प्रवाह आपके लिए लाएंगे और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। 6 बजे भक्ति संगीत और 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एपिसोड 3 आप सुनेंगे और ये कार्यक्रम तैयार किया है गुरगांव की आवाज ने। 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 16 आप सुनेंगे
और शीर्षक होगा मां। पेश करेंगे आरजे शिवानी और 9:30 बजे फिल्मी किस्से एपिसोड 5 शोले पेश करेंगे दीपक कश्यप और 9:55 पर कार्यक्रम होगा इनसे मिले एपिसोड 6 कुलविंदर कौर होंगी हमारे साथ। पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल, 7 बजे सरगम एपिसोड 9 पेश करेंगे आरजे किरणी और 8:30 बजे सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है रात की चुप्पी। आप जरूर अपना फीडबैक अपनी जानकारी हमें भेज दीजिएगा हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इन्हीं खूबसूरत जज्बात के साथ अब मैं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी आपसे लेता हूं इजाजत। कल सुबह फिर होगी मुलाकात नई ऊर्जा नई तरंगों और बेहतरीन तरानों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रख लिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो व्यवस्था हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।